0: TFBS Gorkha Radio Ho.
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: गोरखा रेडियो हो
1: आज अपनी फेर आवेर में मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह जुन किरी बिचारा अल सम मले बात पर ही बसी गोली मो बजे कुस्तु खत्म की बने दिल जार जगर माते रहा खुक मले इला ओ पोस्टी गया मेरी बुढ़ी बुढ़ी बंदर इसलिए ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माय सातो पुतलो फ्लाइंग आफ्टर सी यू अंग्रेजी बुझ्दैन तलाई देखेर सातो पुतलो उड्छ भन्या क्या

मां बारे लड़े हो टोगा खोला बंदे जो आप धोगे छोड़े दिंजु संजय दुखा दिंजु यार मत बारे लड़े दिंजु बंदर सीधे छेड़

0: यो BFBS गोरखा रेडियो हो।
1: देव चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: ओरे आ आज माले छो छो छो छो छो ओहो घर पुगे घरे ओहो गोपाल ने परेवाला लाई लाठी हो क्यों पारती मम
1: खाड़ा कौन खाड़ा लेवड़ा पूरा तू पैर पड़ी।